Nepalkum kak nola sugusa jazoni palesa Nepali jazona padu good life biscuits alejuna karashmila alechinya nachana dila Nepal bhashaya khobi saki paya pradarshan vokalakar hana sambandhi mukhakha suprasiddha films pralia nyoboya Nepal bhashaya nhogo saki pa khobi ya premier show yagdu thaneya kamal binayak khopaya kamal binayak hale jugu saki paya premier show rise saki paya kalakar va pravdik bindu hane jana yagu kha suprasiddha films pralia nayo प्रकाश सैजुया सभापति तेजु गुज्याजोले नाजामा वरिष्ठ कलाकार आशाकाजी थको म पाकथा छाया दिगु ख समाज जुइगु दुख पीडा त्याग मतिना मानवीय संवेदना याता कया थो काल्पनिक बाखया लिदो सा सकी पा निर्माण याना तगु ख निर्माता सेम श्रेष्ठ या मुख्य भूमिका दुगु सकी पा सजिना नापित श्याम माक श्रेष्ठ शान्ति राज बाहक साहु प्रजापति प्रकाश बज्राचार्य राजेश्वरी शिल्पकार लगायत अपाला कलाकार या अभिनय दुखाना चुगु सकी पाया छायांकन सुरेश ख्याक श्रेष्ठ व सम्पादन विक्रम संघदेव यनादिगु खसा नृत्य निर्देशन बाल मुकुन्द श्रेष्ठ यनादिगु ख सकी पाया चोमी व निर्देशन भाषा श्याम माक श्रेष्ठ यनादिगु ख प्रीमियर लिपा वरिष्ठ कलाकार आशाकाजी थकु सकी पाया कलाकार व प्राविधिक बिन्द खादा कोखाका हनापौ देशासी हनेजा यनादिगु ख ज्याजोले मु पहा थकु नाजामा वरिष्ठ मेहालामी जुजुकाजी रंगीत रंजित संगीत सकी पाय तिथि पक्ष व सकी पाय दैगु मेय तिथि पक्ष तपया नुव खतया दिगु ख ज्याजोले नाजा पि मेहालामी पि संगीता थापा साके सरस्वती मानन्दर लेचनामी जुगल डंगोल रविन्द्र सन्धारी राजकुमार मानन्दर लगायत उपस्थिति दुगु ख जीथो सकी पाय मेचे थौ तेतना गुमर मेगु बालेजी माला पकाना तेगु जी थौया लागि दासा जी विशेषना थोन नोनोगु मेहे तय सुनागु जुल उली प्लांगु मे त मखु गुंगु तस्कान हु गुजा पति से प्लांगु ओए जुले छपु मे तेतना जी चन्दिका बादे घजु यासले थुगु मे थमे जी दक्ले ना पाए जासो तेतना गु थेसो खला थो लगभग त्या दैवे ढुङ्गल थुमे चाहिँ युट्युबे अपलोड जुगु निर्वाण मिडिया नेपाल पाखे चाहिँ अपलोड ज्या चुङ्गु दु नुग लिसे नुग या थागो मेख थो थुमे चुया दिम अलि लेसिना दिम अमृत रत्न सक्य अलि चुके मिया अरेन्ज जान दिगु रेकर्डिङ जान दिगु चाहिँ बालकृष्ण वंशी जी खसा थो म्युजिक भिडियो लिएर छ अमोक वीर बसुवाचार्य सुषमा श्रेष्ठ बिस मिता दिगु दु यसा नेपिस थो मेना छि सोया दिफु अलि आधा सा निना दिफु नुगा लिसे नुगा या धागो मी

लेपाङ्गुतिपातुङ काख्नोला सकुसा ज्याझो नेपाले सा नेपाले ज्याझो छिङे न छना दिला अले जुना खरस मिला ज्याझो सा आछो सो बुख तते ले छपुमे या के अले लिपा चाहिँ जीवन एको इजी आते तेनागो बुख चाहिँ नाथी बज्र या लुमन्ती कविता वाचन जुगो बुख ख खलि नेवा दबु नेपादे मुक व व लिवी चोसा दबु या मंका गोसाले नाथी बज्र व सफु दुखु लुमन्ती कविता ज्याझो जुगो दु शनिबार सात ओके बहने जुगो थो ज्याझो खलि नेवा दबु नेपादे मुक व या नाय मुनि कार्यसभा नायसी जुगु ख ज्याझोले नेपाल भाषा एकेडेमीया भाइस चान्सलर डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका मु पाहा कथा चाहे दिगु ख ज्याझोले हलि नेवा दबु नेपा दे मु कवाया फुलामा नाय सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ अथे केन्द्र नोको साक्य सुरेन मु छान्जेबु मु श्रेष्ठ अथे प्रतिभा समाज या नाया डाक्टर बजराज साक्य नाति बस्र जहान प्रमिला बजराचार्य ओ लिवी चोसा दबिया लिउ कजी सुधीर खोबी लगायत विशेष पाहा कथा उपस्थित ज्यादिगु ख ज्याझोले खोपया वरिष्ठ कवि योगेन्द्र प्रधान प्राध्यापक नर्मदेश्वर प्रधान लोक कवि राजभाइ जकमी नारद बज्राचार्य प्रतिरत्न साक्य मिलन साक्य पूर्णिमा साक्य व नाति बज्र या मिहा नली बज्राचार्य अले छेपी लिज बज्राचार्य व लिजना बज्राचार्य पिन्सन कविता वाचन हेर्न दिलसा अमेरिका निवासी भाषा ह्योमी केशर मान ताम्रा कार्य कविता नाम बनाइएको ख साङ्गीतिक प्रस्तुति नभोग उगु ज्याझोले जुसुकाजी रञ्जित रिता महर्जन सरिता साई राजु महर्जन लगायत पिन्छ मेहाला दिएको ख ज्याझोले नाति बज्र व सफु दुखु या थिथि पक्ष या त कया मुपा डाक्टर पुष्पराज कर्णिका र अरे संस्कृतिविद डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य डाक्टर बज्रराज साक्य साक्य सुरेन व नुद समारोह समिति या नाय प्रेम हिला प्रेम हिरा तुलहादर पिन्छ ख तया दिएको ख আজি ডক্টর লিপাঙ্গু বুখ পাখে বলতে না খেরবাদ বুদ্ধিস্ট একাডেমিয়া প্রাচার্য ডক্টর সাকিয়া লুমন্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশ জাজো যুগুদু খেরবাদ বুদ্ধিস্ট একাডেমিয়া প্রাচার্য বহু আয়ামিক ব্যক্তিত্ব ডক্টর মহেন্দ্র রত্ন সাকিয়া লুমন্তি ধর্ম সংবেগ পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভাজল একাডেমিয়া প্রাচার্য লিসে প্রাগিক ব্যক্তিত্ব পরিয়েতিক শিক্ষা ইয়া অভিয়ন্তা অনুসন্ধানকর্তা বৌদ্ধ সাহিত্য ইয়া সাধক বরিষ্ঠ বৌদ্ধ বিদ্বান মূর্তিকার মধুমা ডক্টর সাকিয়া লুমন্তি असार 23 गते मंगलबार विश्व शान्ति बिहार नो बानेश्वरे तोजाजो जोगु ख एकेडेमिया अध्यक्ष बिजु भिक्षु निग्रोथ मास्तवीर या सभापति दे जोगु धर्म संवेग पूर्ण श्रद्धाञ्जलि सभा मु पाहा कथा बिजामा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ या अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु फ्राखो विशाल धम्म शोभन मास्तवीर पाखे पञ्चशील ब्या बिजागु ख भिक्षु संघ पाखे अनित्य भावना पाठ याना बिजागु ज्याझोले फुलामा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विशेष पाहा कथा छाया दिगु ख सभा या त सम्बोधन यासे खनाल मधुमा डाक्टर साकिया व्यक्तित्व बौद्ध धर्म या खिले बिया दिगु योगदान लिसे बेकया थिति पक्ष या त कया नुगा ख तया दिगु ख बौद्ध विद्वान डाक्टर अमिता धाखुवा मधुमा डाक्टर साकिया जीवनी कना दिगु खसा उगु इले मधुमा डाक्टर साक्य छोया दिगु अभिधर्म चेत सिकया मसिका नया सफुयाना पित बोझा यागु ख ज्याझोले लोटस कलेज या प्राचार्य वीर काजी साक्य अक्षेश्वर कलेज या प्राचार्य नरेश साक्य बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दर विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य सुषमा बज्राचार्य व न मधुमा डाक्टर साकिया बारे नुग ख तया दिसे विचार हेका दिगु ख उघे ज्याझोले एकाडेमिया नुमा प्राचार्य डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर या त नियुक्त यानाको घोषणा न यागु ख अथे सभाया सभापति भिक्षु निग्रोड महास्थवीर एकाडेमिया पुनाचोङको प्राचार्य डाक्टर मानन्दर यात्रा नियुक्ति यानाको घोषणा हेर्न ज्यागो खसा पुण्यानुमोदन नेपा एकाडेमिया नुमा प्राचार्य डाक्टर मानन्दर यात्रा नियुक्ति लिसे पदभार ग्रहण न याको ख यहाँ मेरो हजुर मेजुपी थौयागु लागि थुलिहेजको बुख तेतेना थुलिहेजको इलन लात थौया

नेवाले अझ चिहेको खतजना भए अहिले नचिन चिहे दाइ थिए अन्तर्राष्ट्रिय हलि नेवा सम्मेलन चुइतङ गुदु थोचाइ नेवा दे दोगुया गोस्या सोनिगल जी मगो सोनिगल मज तप्पा कहे जी गणजी गुब्ले जी अलि गजागु जी व कार्य व सम्मेलन या कार्य स्वरूप चाहिँ व बारे जी मेगुबाले डिटेल तेगु जी आ द क्ले लिपा तस्क छ पुपुलाङ मे तर तस्क हे बालागु मे जी दे तेना जुजुकाजी रञ्जित यसले थोगु थोम मे चुए दिम अलि लेचना दिम ह हरि बहादुर रञ्जित थोमे ना प्राप प्राधिक समझने लगी रविन्द्र या तो योग को सुबह देशा से जी रश्मिला न सिक्पी पाखे उजाफने ज्याजो निना दिगुली योग को सुबह

93 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर 106 रुपियाँ 81 पैसा, बिक्री दर 107 रुपियाँ 23 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिदर 109 रुपियाँ 7 पैसा, बिक्री दर 109 रुपियाँ 50 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर 118 रुपियाँ 85 पैसा, बिक्री दर 119 रुपियाँ 32 पैसा। जापानिज यान 10 को खरिदर 9 रुपियाँ 47 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 51 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिदर 22 रुपियाँ 66 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 75 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिदर 40 रुपियाँ 90 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 6 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरिदर 42 रुपियाँ 15 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 31 पैसा। थाई भाट 1 को खरिदर 4 रुपियाँ 58 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 60 पैसा। यूएई डिरहाम 1 को खरिदर 41 रुपियाँ 83 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 99 पैसा। मलेसियन रिंगित 1 को खरिदर 37 रुपियाँ 67 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 82 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिदर 10 रुपियाँ 28 पैसा, बिक्री दर 10 रुपियाँ 32 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिदर 15 रुपियाँ 87 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 93 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिदर 23 रुपियाँ 43 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 52 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिदर 19 रुपियाँ 60 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 68 पैसा। कुवेती डिनार 1 को खरिदर 479 रुपियाँ 20 पैसा, बिक्री दर 501 रुपियाँ 15 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरिदर 407 रुपियाँ 45 पैसा, बिक्री दर 409 रुपियाँ 4 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिदर 399 रुपियाँ 2 पैसा, बिक्री दर 400 रुपियाँ 58 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौ दीपक गुरुङको यो संसारमा।